0: बात यही है कि इसमें कुछ भी ना गिरवी नहीं है, कोलैटरल नहीं है। बाकी आप कोई भी लोन कहीं भी देख लीजिए, पहले ही बंदा स्ट्रेस में होता है, दिक्कत में होता है, ऊपर से जिनसे लोन लेता है पहले तो उनको मोटे पैसे देने पड़ते हैं, और ऊपर से इतना कोलैटरल, इतनी हिडन, इतनी चीजें, इतना मतलब बंदे को तंगी कर देते हैं, खप्पा सा लगता है डॉक्यूमेंट्स का। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपके एनवे, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, गवर्नमेंट दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, ये इसका सीक्रेट है, इसलिए इतना इजी है ये। 50,000 से 1,70,000 का लोन हासिल करें, ऑन अदर हैंड आप आसान से कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, कहीं नहीं जाना, फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगानी है, 20 घंटे हफ्ते में ऑनलाइन रहना है, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक।
1: सो इहदे च अप्रूवल रेट किन्ना क्या है? की सब नो अप्रूवल मिल जाती है? ते कोर्सेज किन्ने क इजी ने?
0: हाँ जी, इसमें टच वुड सबको अप्रूवल आ जाती है 1.5 से 3 महीने में। अगर किसी के पास लाइक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे आपकी फाइल मैंने आज लगाई, आपका बच्चा महीने बाद हो गया, देन उसका बर्थ सर्टिफिकेट आने में 2 महीने लग जाते हैं, तब थोड़ा डिले होता है उस चक्कर में। बट यस, 90% क्लाइंट्स का काम विद इन 1 से 3 महीने में आ जाता है, और इसलिए आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, स्टाफ रेडी आपकी कॉल के लिए। असेसमेंट कराएं, कल ऑफिस आए, एडमिशन कराएं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, स्किल एंड फंडिंग दोनों हासिल करें।
1: वेरी गुड। सराज का नंबर है 4372643175। एंड सराज, ये जो लोन है इदी किन्नी क रेंज है? एंड जे किसी कोई होर लोन है हायर इंटरेस्ट रेट ते, की उस लोन नो इस लोन दे नाल पे कर सकते हैं?
0: हाँ जी, इस पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको लाइक दे इसलिए दे कि आप कहीं भी इसे खर्च करें, लिविंग एक्सपेंसेस कवर करें। और बाकी रेंज है इसकी 50,000 से 1,70,000 डॉलर। आज भी अराउंड 7 क्लाइंट का अप्रूवल आया, आई थिंक 7 या 8 क्लाइंट का अप्रूवल आया है, उसमें से सबको पहली किस्त गिरी है। सबका टोटल, ज्यादा क्लाइंट्स का टोटल इस साल का 70,000 डॉलर है। मतलब अगर फैमिली ऑफ फोर है तो उनको अराउंड इतना पैसा उनके खाते में गया है, उसकी पहली किस्त आ चुकी है आज खाते में। पीछे ना रहिए, गवर्नमेंट हर जगह कट्स कर रही है, क्या पता आगे जाके कोई पॉलिसी चेंज होए, आप पीछे ना रहिए, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, 0% पे लोन को हासिल करें।
1: वेरी गुड। सराज का नंबर एक क्विक है 4372643175, 4372643175। सराज अपनी फीस बारे भी दस दो।
0: फीस जी काम होने के बाद 199 है, कोई इसमें हेरा फेरी चलाकी मीठी बातें नहीं है। टचवुड, तभी इतने टाइम से मैं 1.5 साल हो गया है, अगर हम कोई कमीशन या कोई चलाकी करते होते तो अब तक तो पता लग ही जाता आपको। बट हमने कोई, हमें लालच नहीं है, काम होने के बाद 199 फ्लैट फीस लेते हैं। और आपको कितनी फंडिंग आ रही है? 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक। पहली किस्त कब स्टार्ट है इस लोन की? 2.5 साल के बाद। तब ब्याज दर क्या है? शुरू में 0, बाद में ब्याज क्या है? 2.5%। साल का मतलब $1,00,000 पे ब्याज सिर्फ $200, बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल के, बिना किसी हैसल के लोन हासिल करें, कहीं भी उस पैसे को खर्च करें। नंबर 437-234-3175, 437-234-3175। कॉल होने करो, एस्टिमेट लो, 4372643175।
1: 4372643175, 437-234-3175। बहुत शुक्रिया सुनाश, थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: बहुत धन्यवाद आपका। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरा, एक तुसी याद रखो मनप्रीत टींट सानू गड्डियां दी घरां दी इंश्योरेंस नहीं कट रही, तो मनप्रीत नूं फोन किया अजे, मनप्रीत नूं फोन करो, देखियो सी इंश्योरेंस कंपनियां डरदियां ते कहिंदी कि चलो जी जो रेट तुसी कहिंदे उही दे दिंदे आ। सो नंबर है मनप्रीत दा 416-500-1818, 416-500-1818। G2258, हाँ जी,
2: हेलो नवी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ?
2: ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼?
1: ਉਹ ਬੱਲੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਡਾਇਰੀ 'ਚ,
2: ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ
1: ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। शुक्रिया। देखो अजकल ना जो किसके घरे आप जाने जी ग्रैंड मदर्स ने पहला पुछदियां पुत वाईफाई का पासवर्ड जहाँ दही मड़े आ। सो अजकल इंटरनेट ते फोन सारे नूं चाहिए। फ्रैश फूड सेंटर नूं याद रखो, ग्रोसरी करनी है 12,570 कैनेडी रोड, ਕੈਨੇਡੀ ਐਂਡ ਡੂਗਲ, ਕੈਨੇਡੀ ਐਂਡ ਮੇਫਿਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤੀਜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਿਆ, ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਐਂਡ ਟੋਰਬਰਮ, ਟੋਰਬਰਮ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਜਲੇਬੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ 1650 ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 24/7, ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਾਲਕਨ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਲੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ।

0: रॉयल थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।
2: GTA दे होम बायर्स मिस ना कर जायो। पैराडाइज डेवलपमेंट्स सेल कर रहे ने टाउन होम अते डीटैच कर मिल्टन ब्रैम्पटन सीटन अते विटबी दे विच। कीमत सिर्फ 6,29,990 डॉलर तो ते नाल 1,30,000 डॉलर तक दे डिजाइनर फिनिशेस HST रीबेट्स अते बहुत वडिया सेविंग्स दा फायदा लो। आज ही विजिट करो paradisedevelopments.com paradisedevelopments.com। 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट या पहुंचो 10,970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच, अमृतसरी कुलचा विथ चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399। सब्जी मार्केट ओपन 24/7। कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डिया नु लेके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है। स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1
3: की थी सब।

पल दसरदा पुर हुए दयाल नकाब हूं चूरी है खुना जानिए सतगुरु हुए दयाल तहार रंग माणिए अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते सुहानी शाम दे विच खूबसूरत ते सुहाना रेडियो प्रोग्राम रेडियो नाल लैके मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रभ संधु और मेरा हमेशा तरह साथ दे रहे ने आर जी गैवी उर्फ गुमनाम सुन वाले सारे दोस्तों मित्रों भैनों भरावान साढ़े भैन शावान फुलों वर्गे चेहरिया ते रब वर्गिया मावान बहुत बहुत प्यार सत्कार अदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो

0: और हुन थोनू कार लैंड ली रेडी करेंगे। मॉर्गेज विकिंग गिरीश शर्मा।
1: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स,
0: सब ले। याद रखो, गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं, क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ। डीलिंग विद ऑल बैंक।
1: कॉल 6476068110
0: और विजिट sharmamortgages.com।
2: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
3: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
2: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
3: 6475294 647 835 5294।
4: स्टीफन फर्नीचर के धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Code, Bolton, 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
5: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर, आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: शादी दी मूवी बनवाउन ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली, याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म्स अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ली आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
7: बड़े वीर, चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई किथे जावां?
8: ता फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक, क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा। 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
3: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
7: 416-717-2929।
3: 416-717-2929। क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, 14 स्टेनवे बुलेवर्ड, यूनिट 4, इटोबिको।
9: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
10: लै, आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
9: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
11: 647-706-6640। ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੋਂ?
1: ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਟਰੱਕ ਲਈ ਲੋਨ ਲੱਭਣ ਡਿਆ।
2: ਸਮਾਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਲੋਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਓ। ਟਰੱਕ ਲੋਨਸ, ਮਾਰਗੇਜ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਓ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਮਾਓ 647-5432-97, 647-504-3297, 20 Maritime Ontario Boulevard, Unit 210, Brampton, or visit www.smartfinancialgroup.com.
3: ट्रक कारा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
4: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है जीटीए विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप पीएनजे स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
5: पहुंचो 5530 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैक्सन
6: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रक ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
4: ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਐਨ ਗੈਰੀ ਨੂੰ
6: 905-459-5533
4: 905-459-5533
6: ਪੀਐਨਜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ

0: दलजीत दोसांझ
1: थोड़ी भाई
0: आप क्या लेने आए हो
1: शुद्ध देसी घी
0: लो भाजी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है
1: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं घी सेहत के लिए खाते हैं मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी जो घर वाला टेस्ट दे जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा
0: नानक घी भाजी
1: नानक घी चाहिए यार अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए सो गुड सो प्योर इट्स नानक

0: यार इना इंश्योरेंसा ने धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: भाई ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा मैं कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
5: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
6: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां लई खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन

0: Brampton या फिर तीजे लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बंदा है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल
3: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
5: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
6: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ Cellular Point, more phones, more plans, more toys.
7: A to Z Kitchen Cabinet ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ A to Z Kitchen Cabinet 416-720-7073 905-720-7073 ਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

0: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
1: जिंदगी दे सफर विच मुश्किल तां किते भी आ सकदी है। एक्सीडेंट या सट लगन कारण जिंदगी दी गड्डी खलो गई है, काम ते वी नहीं जा सकदे, सारे पासों समस्यावां ने घेर लिया है, तां दिल ना छड्डो। असीं हां तुहाडे दुख वंडाउण लई। साडे एक्सपीरियंस्ड लॉयर रूपा बराड़ तुहानूं टाइम ते वध तों वध बेनिफिट्स दवा सकदे हन, इत्थों तक कि फीस वी क्लेम मिलण तों बाद। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो रूपा बराड़, कॉल 416-991-5939, 416-999-5939।
2: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $1,00,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222।
3: If is transportation hire kar rahe ne cross border AZ drivers, bahut hi shandar opportunity, dedicated auto parts, daily home runs, same truck te trailers, lagbhag 10,000 mile per week milenge, starting from Kushawa, Etobicoke ate Bolton, je tuhade kol vi hai valid AZ license, clean CVOR te abstract US border eligibility te fast card, ta aaj hi Everest transportation nu call karo 905-846-2229 extension है 4 या फिर 905-334-8222 यानी 905-846-2229 ते, या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4।
4: Are you ready?
2: टिक्का जंक्शन ले 647-429-4040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम 647-429-4040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 647-429-4040। तुसी इनारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 647-429-4040, 647-429-4040।
5: दुख ए नहीं कि सज्जन कुत्ते निकले, ना ना ना ना, दुख ए नहीं कि सज्जन कुत्ते निकले, कुत्ते हुंदे तां वफा ना कर दे, जनाब तां कुत्तियां तो भी उत्ते निकले।
2: अपने वीर जे निजर इन्हां कोल बहुत वधिया वधिया बिजनेस प्रॉपर्टी आउंदियां रहिंदियां हन, जिवें मोटल, होटल, गैस स्टेशन, प्लाजा, बहुते बिजनेस दे नाल रहायश दा भी इंतजाम हुंदा है। अपने वीर जे निजर नूं कॉल करो जी 647-201-6002, 647-201-6002, 201-6002।
6: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हैं साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: आज खुश तो बात होगी
6: था। ओ ता होना ही है, जब तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तई नकदा बनदा ही है।
7: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
6: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
8: क्यों कर रहे हो यहां पर?
6: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
10: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
11: दोस्तों, मैं रविंदर वडाली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे विच तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड दे
12: बदनाम करती नाले मैं ते क्यों दी मिठी चोरी
11: ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0: जी दोस्तों लखविंदर वडाली 11 तारीख नूं 11 अक्तूबर नूं ब्रम्पटन थोड़े शहर दे विच रोज़ थिएटर दे विच लाइव पूरे बैंड दे नाल पहुंच रहे ने और टिकटां नहीं लईआं तां तुसीं टिकट अपनी होल्ड करा लो टिकट मास्टर ते जाके जां फिर रोज़ थिएटर दी वैबसाइट दे उत्ते जाके जां फिर तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकदे हो 9057990999 साडा नंबर है। सो रोज़ थिएटर तुहानूं पता कि कोई ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं है और उहदे विच जिहड़ी साउंड सिस्टम सारा सिटिंग सिस्टम बहुत वधिया उहदे विच जिहड़ी साउंड सिस्टम सारा सिटिंग सिस्टम बहुत वधिया हुंदा पार्किंग बिल्कुल फ्री होगी। सो 11 तारीख याद रखना। सो मेरे नाल इस टाइम टोनी पंगू साहब ने। टोनी साहब वेलकम जी आया नूं ते अज आपां केड़ी-केड़ी लिस्टिंग जिहड़ी उह बोलीए।
1: सुखी भाजी तुहानूं ते वतन दूर दे सारे श्रोतां नूं जी मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल नमस्कार आदाब। मैं दसदा जी अपने कोल होटल आया 4-5 एक हिल्टन आया 170 रूम का ते हैम्पटन इन आया 130 रूम का ਹੋਲੀਡੇ ਇਨ ਆਇਆ 130 ਰੂਮ ਦਾ ਕਲਰਿੰਗਟਨ ਆਇਆ 250 ਰੂਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਨੀ ਭੰਗੂ 416-676-3446-676-3444 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 416-881-7070-416-881-7070 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਰਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੋਨਿੰਗ ਹੈਗੇ E2 ਜੋਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ।

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, होने ही कॉल करो,
2: 5:30
3: तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने.
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा.
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी. जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है. हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते.
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
4: 416-509-1509
5: और विजिट इंश्योरेंस for you.ca.
2: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com. लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जा देश परदेश टीवी नू कलेक्ट करो, उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7. दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उडान भरन तों पहलां इक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स. डेस्टिनेशन बैडिंग करनी है, शिप क्रूज लई जाना है, जां फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, तां कोमल ट्रैवल. इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करन वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वालिआं नू 905-239-7711. Komal Travel and Tour.
0: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 Kante Satto Din. Hunta Desh Pradesh Prime Time Radio Hazara Hi Business the Grand Opening Live on Location Nal Karwa Chukya Hai. Te Karwa Raha Hai. Impossible is nothing. Tusi Bhi Apne Business Vich Vadha Karan Waste Desh Pradesh Radio The Live on Location Friday Saturday Karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551. 416-725-2551.
2: ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਸੱਤ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹਰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੀਟ ਵੀ ਔਰ ਮੈਰੀਨਡ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ, 45 ਡਸਟ ਡਰਾਈਵ ਫਿਫਟ ਫੈਂਡਰ ਵੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ, 9985 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਟਨ, 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ, 33 ਫਾਰਲੀ ਡਰਾਈਵ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, 600 Haskell Road, Cambridge, Namikuni Branch, 25 Centralwood Parkway, Kennedy to Centralwood Parkway, then there are Hariyatajiyan Sabjiyan, or the Sassi Grocery Vaste Poncho, Indian Fruit Land Day.

0: ਹਰਡ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ
1: ਫॉर ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan vaste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551 कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट मजा लवो संडे नु पराठा प्लेट मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट ट्यूसडे चना भटूरा वेंसडे लाजवाब वेज थाली थर्सडे यमी हाका थाली फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल कॉल एट 905-794-8111 सिंपली डिलीशियस मतलब

तो सही थे अफोर्डेबल लाइफ डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की प्लानिंग करवाना चाहते हो, पुरानी पॉलिसी फ्री च रिव्यू करवाना चाहते हो, सुपरवीजर विजिटर वीजा इंश्योरेंस की जरूरत है, बच्चों लिए भी प्लानिंग करवाना चाहते हो पढ़ाई तो फ्यूचर लिए, सेम नंबर 416-457-3381 416-457-3381 4 7 1 33 81 3 1

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनब्रिज गैस.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।